अब की बार बख्श बंदी को बहु न पौजल फेरा। साढ़े बहुत ही सत्कार योग सरदार तरलोचन सिंह जी, सतगुरां ने तिन्हां नूं जितनी कु सवासां रूपी आरजा दे करके इस मातलोक ते भेजिया सी, अपनी सवासां रूपी आरजा भोग के सतगुरां दे चरणां विच जा विराजे सन। आपां सारिआं ने रल के कीर्तन रूपी अरदास कीती है कि सतगुरु जी अब की बार बख्श बंदे को बहर ना पौजल फेरा। कृपा करनी सरदार त्रिलोचन सिंह तो इस मात लोक अंदर विचरदियां तो जाने अणजाने विच बेअंत तरह दियां भुलां गलतियां हो गईयां होणगियां। कृपा करनी ना चितारदे होए सदीव काल लई आवागुण दे चक्करां तो बचा करके अपने चरणा कमलां विच निवास बख्शना ते पिछे परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शना। परिवार दे विच सुख शांति तंदुरुस्ती देह रूप दा चढ़दी कला वाला जीवन बख्शना। सो प्यार वालिओ इतनी सेवा प्रवान करनी जी, दासरियां तो कीर्तन करदियां तो बेअंत तरह दियां भुलां गलतियां हो गईयां ने, सतगुरु जी अते सात संगत बख्शन योग है, बख्श लैणा। आओ हुण सारी संगत रल के आनंद साहिब जी दी बाणी दा जाप करिए जी।

हरसिमरन कर भक्त प्रगटाए, हरसिमरन पै सिद्ध जति दाते, हरसिमरन धारी सब धरना, हरसिमरन कियो सगले आकारा, हर कृपा

जे को अपनी शोभा लो रे, जे को जन मरण ते डरे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, सागल पुरख में

पर कुछ न बूझे जय प्रसाद तर ऊपर सुख बसे जय प्रसाद पीवे शीतल जला जय प्रसाद भोगे सब रसा।

दस वस्तु लै पाछै पावै एक पीना दे दस पी हिरले जिस ठाकुर को जिस ठाकुर से नाही चारा।

जय प्रसाद सुने कर नाद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद परम गत पावे, ऐसा प्रभु त्याग अमर कत लागो।

सो भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी क्या हो अचिंता ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप ब्रह्म ज्ञानी का दस वट बागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय अदाखर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ।

0: राखे
1: नानक सब के हाथे
0: कई कोट पहे बैरागी
1: राम नाम
0: कई कोट प्राप्त को खोजनते कई कोट दर्शन प्राप्या कई कोट माँ कह सत संग जिनको होए आप सो प्रसन्न कई कोट खानी अर खंड कई कोट होए अवतार कई बार पसरे उपासार।

संत कै दुखन यार जा कटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत कृपाल कृपा जे करै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन सर्प जौन पाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै।

के दुखी की जड़ किश ना है, संत के दुखी को अवरण राखन हार, संत का दुखी इउं बिल लाए, संत का दुखी भूखा नहीं रा

मानुख की टेक बिरथि सब जान, जिसकै दिया रह अकाए, मारे रखे को आप, जिसका हुकम बूझ सुख होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, उस्तत मान।

करे सो प्रभ कै रंग सहज पावे हो वैसो होए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जिसते उपरित समाहे समाए।

जिसकी श्रेष्ठ सो करने करते की मित न जाने किया विस्मन विस्म पे विस्म

अविनाशी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अवगत गोचर प्रभेका जब नाथ निरंजन गोचर गादे।

जय स्वरूप केवल जगदीश जय जो स्वरूपी जो संग समाव कर्ण करावन करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई।

दीनन की प्रतपाल करै नित। संत उबार गनी मन गारै, पाच पछु नग नाग निराधप। सर्व समय सबको प्रतपारै, भूखत है जल में थल में पल में। कल के नहीं कर्म विचारै, दीन दयाल दया निध। दोखन देखत है पर देत ना हारै, दीन दयाल दया निध। दोखन देखत है पर देत ना हारै, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दे साहो। जिस पास

जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग असा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन

तारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनिक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वसकै न कोई। एक बार दिन तुम्हें संभारा काल फास्ती ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा हा।

बस जियो पिंड सब तेरी रा मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा कोई न जाने तुमरा अंत चेते सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए।

इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाकै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याइय मेरे जियड़े तां सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल हुई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहा जय हर सिमरन पया तह उपाध गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप।

दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद रिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो। जिस पास बहिठिया सोही है सबना दा विसाहो।

क्या गुण तेरे आखा स्वामी, तू सर्व जिया का अंतर जामी। हो मंगो दान तुझे पै करता, हरियां दे नाम खाणी है। किस ही जोर हंकार बोलन का, किस ही जोर दीपान माया का। मैं हार बिन टेक तर न काई, तू करते राख मैं नमाणी है। नमाणे माण करे तद पावै, हर केती चख चख आवै जावै। जिनका पख करै तू स्वामी, तिनकी ऊपर गाल तुदयाणी है। हर हर नाम जिनी सदा त्याया, तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया। जिन हर सेव्या तिन सौ पाया, बिन सेवा पशु ताणी है। तू सामा वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मत गहाथ। हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी है। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कला अपाए धरी जन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरणा। अग्न अपाए ईदन महबादी, सो प्रभ राख्या पाई है। जी जंद को रिजक सबाहे, करण कारण समराथ अपाहे। खिन मैं था फिर तापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्भ मैं जिन प्रद पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया। सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खेन कीर, गरीब नवाज करे प्रमीर। गर्भ नवारण सर्व सधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो धनवंता, जिस मन वसया हर भगवंता। मात पिता सतबंध पाई, जिन इह सृष्ट अपाई है। प्रभ आए सरना पौ नहीं करना, साध संग ने चोहै तरना। मान बच कर्म अरा दे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण दान मन तन में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या। दुख बनास किया सुख डेरा, जा त्रिवत रहे आगाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांत नंतर अंतर जामी। सिमर सिमर पूर्ण परमेश्वर, चिंता गणत मटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जाप जपने, जीत आवो वसो कर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनों कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसे त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने घर गोले। अनहद रुण चणकार सहज धुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिणस गई होमै मत मेरी। अंगीकार किया प्रभ अपना, जग में सोभ सहाई है। जय जयकार जपो जगदीसा, पल पल जाही प्रभ अपने ईसा। तिस बिन दूजा अवर ना दिसा, एका जगत सभाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता। सिमर सिमर जीव है जन तेरा, एक ओंकार समाई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब अधारण खसम हमारा। सिमर नाम पुनी सब ऐसा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रस माणी। किरत संजोगी भय कतरा, करते भोग बलासा। जो पर करहा सो तन तत मन, पर तन संगार रखे सागाना। मिल एकत्र वसा दिन राती, प्रयोदे तने दलासा है। धन मांगा प्रभो बदतावा, जो पावा सो आन दखावा। एक वस्त को पहुँचना साका, तन रहती भूख प्यासा है। तन करा बिना दों कर जूरा, प्र प्रदेश ना जहो बसो घर मोरा। ऐसा बण जा करो ग्रह पीतर, जित उतरा भूख प्यासा।
सगले कर्म धर्म जोग साधा बिन हर सुख तिल नहीं लादा भई कृपा नानक सत संगा तौ तन पर आनंद उलासा है तन अंधी पर चपल सयाना पंच तत् का रचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है धन कहा तू वस मैं नाली प्रै सुख वासी बाल गोपाली तुझे बिना हो कित ही ना लेखा वचन देह छोड़ ना जासा है फिर कहया हो हुक्मी बंदा ओ भारो ठाकर जिस कारण संदा जिचर रख ते चर तुम संग रहना जा सदा ता ऊड़ सदासा है ज्यों प्रा बचन कह तन साचे तन कसु न समझा चंचल काचे बहुर बहुर परही संग मांगा ओ बात जन कर हासा ही आई आग्या प्रों बलाया ना तन पुसी ना मता पकाया ऊठ सदायो सूटर माटी देख नानक मिथन महासा ही अरे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरी बिन सतगुर पच मुई साग तिन गुरा गल जम फासा है मन मुख आवै मन मुख जावै मन मुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मन मुख भोगै गुरमुख लेप नमासा है गुरमुख सोई जे हर जियो पाया तिस कौन मटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सुर पाओ पाया गल खासा है ਆਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਰਣ ਕੇ ਦਾਤੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸੂਰੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਵਿਸੜਨਾ ਕਤ ਹੀ ਜਾਸਾ ਹੈ ਗੁਣ ਦਾਨ ਕਿਸ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ ਘੜ ਘੜ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਉ ਰੇਣ ਤੇਰੇ ਜੋ ਦਾਸਾ ਹੈ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਸਿਰ ਸਰੈਨ ਬੇਰਾ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹਰਖ ਵੰਤ ਅਨੰਤ ਦਇਆਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖਾ ਵਿਗਸਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੀ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਲਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਭੀਜਾ ਹੀ ਸਾਚਾ ਤਖਤ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ ਖਜ਼ੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹੀ ਆਪੇ ਸੱਚ ਧਾਰਿਓ ਸਭ ਸਾਚਾ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਵਰਤੀਜਾ ਸੱਚ ਤਪਾਵਤ ਸੱਚੀ ਕੀਰਾ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੀਰਾ ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸਹਿਬ ਸੁਖ ਕੀ ਜਾਹਿ ਇੱਕੋ ਆਪ

जोगी सर्व सुख सहज कर तेरा हमें तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुजा ते होवा देह दान सबसा जंत लोवा तोट न आवा पूर भंडारा त्रिवत रहे आकी जाहे जाचह सिद साधक बनवासी जाचह जति सती सुखवासी एक दतार सगल है जाचका देह दान सृष्टि जाहे करे भगत अर रंग अपारा खिनम था पे थापन हारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भगती जाहे जिस देह दरस सोई तुद जाना ओ गुर का शब्द सदा रंग माणा चतर स्वरूप सयाणा सोई जो मन तेरे पावी जाहे जिस चीत आवै सोवे प्रवाह जिस चीत आवै सो साचा साहा जिस चीत आवै तिस भौ केहा अवर कहाँ किस की जाहे तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपुरा ल टूटा गंडा सुरत शब्द हृदय अंतर जागी अमेओ झोल झोल पी जाहे मरा नाही सद सद ही जीवा हमर पया बनासी तीवा ना को आवा ना को जावा गुर दूर किया परमी जाहे पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माहे समाड़ी चढ़ा सवाया नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहे बारह कंचन सोध कराया।

राम नाम विचार खंड पृथ्वी बिरे जीवे अगन माए होम पुराण योनी कर्म करे निमकर श्री कटावे हर के नाम संसर कचनाए मन कामना धीरे जुटे

मखलो तो नाम सुने सुच प्रात्मिक बनता सन हसे सुखदाई पवन पाव कमला सकल समग्री

सतसनाहि कज करे छुपाया अंतर व्यापक रूप सुवान पाथर कैसे करे अथाह नानक तेजन सह समात हर गेले।

मन सरनी पढ़ाकर प्रभु तक है। मन सा सा सिमरो प्रभु चे नानक ताकी भक्त करे। मन ति सिमरत को आलस की जय। मन तिस प्रभु को कबू ना बिजारी।

जय प्रसाद सजे बसना जय प्रसाद पूरन फल जय प्रसाद सह समावे गुरु प्रसाद नानक मन जागो।

पंडित जो न्याने सुख में जाने सुने पंडित को दादे से ज्ञान में जपे तू नामा।

0: कई कोट तो फिसर होते कई कोट कब का बिजार है नान करते गए अंधवारे नजानी कई कोट कभी का तुमने कहो रे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट पर देर पर आए नान करते की जाने करता रहता है कई कोट राजे लजपोगी कई कोट देश भू मंडल
1: अपने
0: कई कोट नाना प्रकार जनते कई कोट गिरी मेर स्वरंती कई कोट

फलहारिणी जल तल मयल सोई ज्योतिष पावे सोई होग अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे अनक रंग प्रकार नानक समय रहा समाई पावे ता पाथर त्रावे

के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन सोबते, संत के दुखन दान तष्ट होए, नानक संत संग निंदक भी करे, संतन के दुखन काल न लवे, संत के दुखन त्रिक जोन गिरमाए, संत के दुखन सब को चले, संत के दुखन नीच निचाए, नानक संत पावे तो भी घट पाए, संत का निंदक किंटे के ना पाए, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को

किछ करे सुप्रभ के रंग तह सुमाई हुए सोए प्रभ का किया जन मेट लगाना

0: पुरुष सब केवल प्रधान सतपुरुष समाए समाणी फूल सत सत पत जिसे बुझाए जिसे सब चली विश्वास सतनाम गुरते पाई सत जंजा के हृदय प्रवेश नाम जपता की गत हुए आपे जाने अपनी मिथगत अब न भूल कर विचार नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया जिन बुझिया जिस आया स्वाद गुर के वचन पदार्थ लय आके संकर संसार
1: गोविंद गीत जन गावे।

ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक की राखे निरंकार मानुष सेवक सा सास मारे अपने सेवक की सर पर रखे अपने सेवक को नाम जपाई कांगी कर्म कोई न रखे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे

उसके कर्तव्य तेज सरब जिया कह राखा सोए जप नानक प्रमलख विडाणी पी अमृत मंत्र पिय इसके जबर नाही दुष्ट आया नाम सुख नाम कसन।

जिसका गुण का एक न जानो। कहो नानक से जन पूरे वंदन अपना तीन जन दे भोजन सर्व सुख का दाता जिसके दर्शन पाप मिटावे। तीस जन

पासास पत में त्यावो भगत करो प्रभु की नित नित नानक मांगे नाम प्रभु सार हरस पावे हरस

जय प्रचो प्रपंच कर पापुं तै भई कहावत आन जाल माया जंजाल दुख सुख मान अपमान अपन के लाभ कर देखे जय भगत जय अभिगत भगत है आप दुहू पाक काया पे तनी आपे कौतक करे अनचोज जिस पावे।

अपेकम विस्ताये निपाने ले समाये अपन जो सब जग परोये सच नाम सोई जन पाए नानक सकल श्रेष्ठ का जेता।

हुकम बूझ परम पद पाई जहाँ के मन बजे निरंकार अनिल पूजे नानक हर प्रभु आपे मिले धर्मानंद दुर्लभ देखा करो उदार प्राण तरण का है स्वभाव मिटे अज्ञान विनसा अंधेरा मन निश्चय नानक पर पावो राम नाम अंतर उतार जिस मन बसे थे साथ परिख्या दुख दर्द मन ते पहुँच जाए दरगाह निभाए घेप तुम्हारी नानक बहुत नया भेज जाए राख न हार जाए रामका नाम जपत मन हो दुख जिस जन को कोई न पहुँचन हार नानक ताके कार्य पूरा दर्शन पे कदु श्रेष्ठ सफल दर्शन सुंदर है रूप अंतर्जामी प्रभु प्रधान

धर्म नयन आपे कनारा आपन जस आप ही सुना आज्ञा करे कि नहीं माया जो कुछ कहना जो आपे गए आपे गने अपने जी के ओत पोत आपन संग राचे दूसर हुए तंसो जी पाए गुरु प्रसाद नानक क्यों जाने आप मिलाए ले प्रसोए जीवन मुख जिस हृदय भगवंत जिस प्रसाद

अजोनियो पाल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास अजोनियो पाल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास।

जाम गुरु होए वल तने क्या गर्व दीजै, जाम गुरु होए वल रख बाहे क्या कीजै, जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चै कर, जो गुरु गुरु एहनस जपै दास पट बेनत कहै, जो गुरु नाम रिद मै तरै सो जन्म मरण दोथे रहै, जो गुरु गुरु एहनस जपै दास पट बे

अमृत वेला सच नाव वड़ियाई विचार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे असमाई जेहो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई तीर्थ नावा जी तिस पावा विण पाने के नाय करी मत विच रतन जवाहर माणिक जी कुगुर की सिख सुनी जे जुग चारे आर जा हुरद सोनी होए चंगा नाउ रखाए कै जस

0: नमो देव देव अपेखी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्वपले
0: नमो सर्व गौणे नमो सर्व सौणे
1: अनंगी अनाते निसंगी परमाते
0: नमो पान पाने नमो मान पाने
1: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
0: नमो गीत गीते नमो तान ताने
1: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
0: नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे
0: परपंगी परमाते समस्ती विभूते
1: कलंकर बिनाने कलंकी स्वरूपे
0: नमो राज जेस्वरं परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
0: नमो राज जेस्वरं परम बिरदे
1: नमो सहस्रवाणे नमो असरवाणे
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता
1: अपेक्षी अपरमी अभूगी अभूते
0: नमो जोगेश्वरं परम जुगते
1: नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे
0: नमो प्रेत अप्रेत देवैस धर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
0: नमो साहन नमो पुपुपे
1: नमो दान दाने नमो मान माने
0: नमो रोग रोग नमस्तं सनाने
1: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
0: नमो इष्ट नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं गुणासी
0: अनूप अरूप समस्त निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा प्रीत कर्ता
0: अदो अर्ध अर्ध अंग अंग हर्ता
1: परम परम परमेश्वर पुरुष पालन
0: सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयाल
1: अशेदी अपेदी नामंग काम
0: समस्त उपराजी समस्त अस्ताम
1: तेरा जो चचरी चले है तले है अपीत है अपे है
0: प्रभु है अजू है आदेश है अपीस
1: व्यंग पर्याद शंद यगादे अबादे अनंदी स्वरूपे
0: नमो सर्व माने समस्ती निधाने
1: नमस्व निनाते नमस्व परमाते
0: नमस्व अघंजे नमस्व अपंजे
1: नमस्व काले नमस्व पाले
0: नमो सर्व देश नमो सर्व देश
1: नमो राज राजे नमो साज साजे
0: नमो शाह साहे नमो मा माहे
1: नमो गीत गीते नमो

0: तिरसे आखिर से भक्ति शांत प्रसाद के अचिज देसा के अपिज पेस
1: के अगन कर में के अपज पर में
0: के अपिज लोके के अदित सोके
1: के अदूत भरने के विभूत कर ले
0: के राजन प्रवाह है के धर्म तुजा है
1: के अशोक भरने के सर्वा भरने
0: के जगतन कृति है के शतरंग क्षत्रि है।

0: मन है,
1: मन माने है, जग जाने है,
0: सर्वम पर है, सर्वम कर है,
1: सर्वास्य है, सर्वदास्य है,
0: तन्नाकर है, विश्वंबर है,
1: सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है, सर्वखंडस है,
1: परते पर है, करुणाकर है,
0: अमृतामृत है,
1: खलकायक है,
0: विश्वंबर है।

वाहेगुरु की फतेह। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कपियो बाज बेती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रचा, पूर्ण होए चित की इच्छा। हमरे दुष्ट सब तुम काबो, आप हाथे मोए बचावो। मोर चालीश गत करिया, सब पैरन को आज सगरिया। तुम्हें छाड़ को यार ना त्याओ, जो बचाओ सो तुम ते पाओ। आप फाते मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास न रिए। राख लाए मोए रखण हारे, साहिब संत साहिब प्यारे। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जी अवतरा। जवन काल जो की सिखियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो।

0: को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे,
1: होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले।
0: गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले,
1: आप सड सदा रहे परले गुर बिन अवर न जाने कोई।
0: कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए,
1: जे को गुरु ते बेमुख होवे मन सतगुरु मुक्त न पावे।
0: सतगुरु वाहेगुरु पावे मुक्त न होवे कोई, पुछु बे किया जाए
1: सतगुरु मुक्त ना पाए।
0: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु।

तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारिक ते तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा इन सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए।

ही प्राणनाथ गोविंद है, कृपा निदान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण, करुणा में सब दुख हर, हे शरण जोग दयालय, दीनानाथ माया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर।

0: सास गही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: जुग जुग अटल चवर तखत सिंघासन दे मालिक धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संग जी फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी बड़भागी हो जो अमृत वेले दे दीवाना दे विच हाजरियां भर के गुरु साहब जी की पावन गुरबाणी सरवण करके अपने जीवन नूं अपने स्वासां नूं आप जी सफलां कर रहे हो। गुरु साहब जी कृपा करन, सरबा संगतां दीआं हाजरियां दर प्रमाण करन, समूह संगतां नूं सतगुरु अपने दरों करुणाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करके निहाल करन। अज दे अमृत वेले दे गुरु के लंगरां दीआं सेवावां समूह सेवक परिवार वल्लों सुभाष चंद्र जी अते बीबी सरोज राणी जी दे जिन्हां दे विआह दी सालगिरह दी खुशी विच समुचे परिवार वल्लों गुरु के लंगरां दीआं सेवावां कीतीआं जा रहीआं ने जी। गुरु साहिब जी कृपा करन, सेवकां दे सिर ते अपना मेहरां प्रयत रखन, गुरसिखी जीवन नाम दान बख्शिश करन, देशां विदेशां में सतगुरु जी अंग संग होके सहायता करन। समुचे सेवक परिवार वल्लों जिस जिस भावना करके महाराज जी के पावन स्थान पर यह सेवावां कीतीआं, सतगुरु जी कृपा करन परिवार दीआं गुरमत अनुसार मनोकामनावां मनोभावनावां संपूर्ण करन। समूह सेवक परिवार वल्लों आईआं होईआं संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बेनती है परिवार वल्लों गुरु का लंगर तैयार है, सारियां संगतां ने गुरु का लंगर छक के जाने कृपालता करनी। हुण सेवक परिवार वल्लों जो परसों वाले दिवस तों सतगुरां दे पावन स्थान ते श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ कराए सन, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे पावन गुरबाणी दे श्लोक दी आरंभता होण लगी है। आओ बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण करिए। उस तो बाद श्री सुखनी साहिब दे पाठ हफ्तावारी दीवान दी आरंभता होवेगी जी। सारियां संगतां ने इस तरह सज रहिण दी कृपालता करनी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
2: ਲਾਏ ਜਨ ਦੇਹ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ ਸਭ ਕਸ ਤਿਸ ਦਾ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇਈ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਸ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਆਸੇ ਚਵਹ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪਨੀਤ ਖੁੰਬੜੀ ਕਥਾਏ ਮਿੱਠੀ ਗਗਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ ਜੋ ਰਤੇ ਸਾਹ ਆਪਣੇ

0: कर का पयो जिसका सब से आधारो
1: जीको खावे जीको पुंचे तिसका होए उधारो
0: यह वस्त तजे न जाई नित नित राखे।

निमख निमख तुमहि प्रतपालह, हम बारिक तुमरे तारे सो कहो। टल गुर सेविय एह निस सहज सुभाए, दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया, सुध जिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो, जिस पास बहिठिया सोहिया सब नांदा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै। तिस की महिमा कौन बखानो, तुस तिस का गुण कह एक ना जानो। आठ पहर प्रभ सह जूरे, कहो नानक सीजन पूरे। मन मेरे तन की ओटले, मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो चन सर्ब थोक का दाता। तिसकी सरन सर्व सुख पावै, तिसके दर्श सब पाप मिटावै।